0: क्या हुआ माया?
1: डर लग रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो?
0: मुझे? सिली गर्ल, मुझे क्या होगा? दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया?
0: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।